0: Receive. A year ago, a school was opened in the ashram for 250 pupils. Here, in this oasis of spirit, these children were given a high-quality facility, attention, and an education. They have been offered a future.
1: उठ जाते हैं, नींद चली जाती है ना? पक्षी उठ जाते हैं, फूल खुल जाते हैं, सभी आदमी उठ जाते हैं कि भाई नींद उड़ो, उठो उठो, सूर्य उदय हो गया है, आज सूरज उग गया, उठो उठो, कहो कि नहीं कहो? तो ये रंग जो है वो जागृति का रंग है. काय का रंग है?
2: जागृति का.
1: हाँ, तमसो मां ज्योतिर्गमय. हे भगवान, हमें अंधकार की ओर से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाए. तो ये रंग जो है प्रकाश की ओर ले जाता है.

0: आत्मिक सुख मिले, आत्मा को शांति मिले, सद्भाव का वातावरण कायम हो। एक लंबा जीवन उन्होंने बिताया और किस प्रकार से वे समाज को, देश को, दुनिया को संदेश देते गए, ये सौभाग्य है पाली जिले का, देशूरी तहसील का और निप्पल गांव का, जहाँ वो पैदा हुए। उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिधि में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आज सबके सामने है।
1: टुडे विद अस लार्ज नंबर ऑफ अवर फॉरेन फ्रेंड्स आर ऑल्सो हियर। आई वुड लाइक टू एक्नोलेज देयर डेडिकेशन टू दिस इंस्टीट्यूशन। आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फार्मर्स हियर दैट लुकिंग टू योर डिवोशन वी आर इट्स रियली अप्रिशिएबल एंड इट इज अमेजिंग, इट इज बियॉन्ड अवर थॉट एंड थिंकिंग।
2: तो बाबूजी मन से यहाँ हैं, तन से वहाँ हैं, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं नशा पत्ता छोड़ो, जाति पाति का भेदभाव छोड़ो, सर्वधर्म का सम्मान करो, जिससे कि विश्व शांति बनी रहे, प्राणी मात्र की रक्षा हो और मानव का भी कल्याण हो। बोल श्री दीप नारायण भगवान की। धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की।
3: Today, our stay in India has come to an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul, and the soul of that home is a Gurudev. His word comes from an eternity and lasts for an eternity.
4: God is endless, and His glory is endless. He is beyond our imagination, beyond the borders, and beyond everything.

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमो श्री प्रभु दीपनारायणम।

श्री अलख पुरुषा महादेव की जय। स्वयंभू बाबा श्री देवपुरी जी महादेव की जय। विश्व वंदनीय भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी जी श्री माधवानंदपुरी सदगुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी जी श्री महेश्वरानंदपुरी सदगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं की जय। श्री रुद्राष्टकम् नमामि शमीशान निर्वाण।

इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम शिवार्पणमस्तु। बोलिए भगवान श्री अलख पुरुषा महादेव की जय। देव पुरुषा महादेव की जय। दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। निर्वाण षटकम्।

बोलिए भगवान श्री अलखपुरीशा महादेव की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देवपुरीशा महादेव की जय, श्री माधवानंद भगवान की जय, विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।

0: अलक पुरुषा महादेव की जय, माधव कृष्ण भगवान की
1: जय,
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद ब्रज गुरुदेव भगवान की
1: जय।

0: की जय।
1: श्री माधव कृष्ण भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की
0: जय।
1: आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी भगवान की
0: जय।
1: श्री काशी विश्वनाथ भगवान की
0: जय।
1: श्री गजानन जी भगवान की
0: जय।
1: सब ऋषि मुनि महात्मन की
0: जय। बोलिए भगवान श्री देवेश्वर महादेव की जय।
1: एक और
0: वेद सार शिवस्तवः

देव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो न गम्यहम्।

0: आत्मकं हर चराचर वेश्वरूपिं। इति श्रीमत्स्य शंकराचार्य विरचितं वेदसार शिवस्तव शिवार्पणमस्तु।
1: दीप नारायण
0: भगवान की जय।
1: देव पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: अलक पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: श्री माधव कृष्ण
0: भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव
0: भगवान की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: ओम नमः
0: पार्वती पतये हर हर महादेव। संभव

बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री मंगला जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडल स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

बोले श्रीदीपनारायण भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री आलकपुरी जी महादेव की जय। सत सनातन धर्म की जय। ओम।

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन। ओम शांति शांति।

0: आने की अलग पुरी जी महादेव देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। गंगा मैया की
1: जय।
0: यमुना मैया की
1: जय।
0: नर्मदा मैया की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: जय।
0: गंगा यमुना सरस्वती।

0: ओहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महाशयानंद स्वामी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You here?
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवाधिदेव देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलग पुरी जी महादेव जय। ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायणम। हम सब दास प्रभु, हम मीन्स वी ऑल,
1: हम znamená my všichni,
0: हम सब वी ऑल,
1: हम सब।
0: ओम नमो श्री, श्री मीन्स द विक्टोरीज और समथिंग,
1: श्री znamená vítězství,
0: श्री इज प्रॉपर्टीज,
1: je to prospěch,
0: personalities, many many things,
1: mnoho věcí।
0: ओम नमो श्री प्रभु, प्रभु इज द नेम ऑफ द गॉड,
1: प्रभु ये jméno Boha।
0: यस गुरु। ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायणम। दीप इज द लाइट,
1: दीप ये světlo,
0: एंड दिस लाइट शुड बी एवर एंड एवर,
1: a to světlo by mělo být navždy,
0: not like this flame,

0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्व गुरु महामान्य स्वामी
1: गुरुदेव की जय।

की आराध्य भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय।